Tony Hassan, Sri Lanka संगीत सा हिंदी जनप्रिय संगीत विशेष स्थानीय जनाद्रेट आदरणीय गायक ओगे सातुटुमत नर्तन में वेदिका सजीवीकरण गायन शैली निशा ओगे बाइला सा अनिकुद गीत लोक प्रसिद्ध नाम बहुत पतुना इदास नाम से हत्यावत असुवत दशके बाइला संगीत नव शब्द सा सजीवीकरण गिना कलाकार ओगे गीत वोल्ट तिबू सरलत्व सतुट सा जनताओ समग सृजु संबंध निशा ओगे गायन विशेषत्व गत्ता उत्सव विवाह सा सतुट अवस्था वल ओगे गीत अदत अनिवार्य वादने वेनो सिंगल संगीत जनप्रिय कल पायनियर्स अतरट ओगे गी नमद अतुलत वेनो टोनी हसन गे संगीत अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय राशे मतक करना अमरणीय हांडा

सुनील शांत दस नम से पाले उपतला भाई दस नम से आसुग के साधारण विन्वगे श्रीलंका संगीती पुरोगामी अतिशय गौरवेट पात्र संगीतज्ञ को सह गायके ओ श्रीलंका संगीत स्वदेशी रसे नव सुरवींसा निर्माणशीलत्व गिना आय सिंगल संगीत स्वदेशी हंडक नव मंपेतक सह सत्य रसज्ञना प्रमुख कलाकार ओगे गीत सरल गैंबुरु संवेदिसा श्रीलंकीय संगीते महदवतट लंगावन रसज्ञनेनवा संगीत अध्यापने गीत निर्माणे सा सुरवीम तुल ओगे दायकत्वे श्रीलंका संगीते इतिहासे विशाल सटाहनक कला सुनील शांतगे गीत अदत असन विट श्रीलंकीय संगीते सत्य रसे निर्माणशीलत्वे सा सौंदर्य तावमत जीवमानाय

एंटन रोड्रिगो श्रीलंका बैला सा जनप्रिय संगीत विशेष स्थान गत जन हृदय आदरणीय गायकी ओगे सतुटुमत नर्तनमय वेदिकाव सजीवीकरण गायन शैली निशा ओ बैला लोके अमरणीय नामक बवट पत्तुना हत्या असुव दशक बैला संगीत नवरसज्ञना जनप्रिय गायकी मेनिके मालिकावे सीनी मल्ली मल मेनिके वेनी जनप्रिय बैला गीत ओगे नामे समग संबंध उना ओगे गायन शैली सरल सतुटु सा जनताव समग सुदु संबंधक एतिकल विलासितावकिन पिरी तिबुना उत्सव विवाह अवस्थावलदी पवा ओगे गीत अनिवार्य वादिने उना एंडन रोड्रिगो संगीते अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय बैला रसे मतक्रोण अमरणीय हंडाक

प्रिया सूर्यसेन श्रीलंका जनप्रिय संगीत अतिशय प्रियतम गायक दशक गणनावक जन हृदय लंगा कलाकार मृदु सुवदन संवेदी हंडत सरल गीत रसयत निशा ओगे गीत अदत जनप्रिय आयमी नोवी जीव मानव पवतिनो हत्या वसु दशके प्रेम गीत संवेदी गीत सा जनप्रिय गीतों से विशाल जनप्रियत्व लबागत हो गायन शैली सरल नियतमानी सा हदवत सुजम लंगावेन विलासितावकिंग पीरितिबुन निशा सिनेमा गीत रूपवाणी गीत सा वेदिका संगीत ओसे ओहु श्रीलंका संगीत अमरणीय सटाहनक तबुआ प्रिया सूर्यसेन के गीत असन विट अदत सितट सोयक सेनेहासक सा अमरणीय मतक सोंदक लबिनुआ

नवत तपी हमवाने लबन सती मेवेला उड दावा लिगत लंका रेडियो बटसतान समग एतेक ओब समट जय सतुट वासना ओपेरी सती अंतेकट आसरी पतन मम रंजन धर्म रत्न वेसिन वीरदा नेक्स्ट वोक अम समस्टाक द्राइसे नुव हिय बाय रेडियो डाम्सनट मिट लंका रेडियो सेंडुन अ पुमसे नुव गिप्टस पोलिस रेडियो सेंडुन बीगोस मिट माइन कोलेग एलिस फ्लिस्टर und wir sind wieder da nächste Woche. Bis dann, ich wünsche euch allen super tolle sonnige Woche.